संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जयश्री सनीस ने।

जय श्री स्वप्निस के स्वर में संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। करके अंत में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना, जिसे गाया है श्री गिरीश ने।

संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जो गाया था श्री गिरीश ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारत संगीत, हर समय हर पल।

ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಂತಿನ ಮಹಿಧಾರೇಕವು ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ

Risa ni da ri ri.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग भैरव पर धमार सुनवाएंगे. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी. आपके साथ पखवास पर हैं तापस दास. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव पर धमार. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist is Ashokadhar Nandi. Accompanying our artist on the Pahavaj is Taposh Das. Listen now to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist Ashokadhar Nandi.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव पर धमार सुन रहे थे। कलाकार थी अशोका धरनंदी, आपके साथ पखवाज पर थे तापस दास।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी आपके सामने प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरूद वादन। कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर हैं पार्थ प्रतिम दास। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरोद वादन, कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू धमार इन द राग भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज अशोका धौर नंदी। Accompanying our artist on the Bhavaj was Tapush Das. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Sarod recital. Listen to a Sarod recital in the Rag Basant Mukhari. Our artist is Bhavani Shankar Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Partho Pratim Das. Listen now to the Sarod in the Rag Basant Mukhari. Our artist, Bhavani Shankar Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी पर सरोदवादन सुन रहे थे। कलाकार थे भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर थे पार्थ प्रतिम दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग बसंत मुखारी। आवर आर्टिस्ट वॉज भवानी शंकर दास गुप्ता। Accompanying our artist on the tabla was Partho Pratim Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विनायक वोरा का तार शहनाई वादन. उन्होंने तार शहनाई पर बजाया ये है राग मारुबिहाग. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित सुरेश तळवलकर. In the program of Hindustani classical music, we now present Tar Shehnai recital by Vinayak Vora. He presents Rag Marubihag. Vilambit Gat set to Ektal and Drut Gat set to Teen Tal. He is accompanied on tabla by Pandit Suresh Tarvalkar.

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये था राग मारुबिहाग। अपना तार शहनाई वादन जारी रखते हुए विनायक वोरा अब प्रस्तुत करते हैं राग रागेश्री। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं दिलशाद अहमद। दिस इज रागम डीटीएच।

ये था राग रागेश्री। आप सुन रहे थे विनायक वोरा का तार शहनाई वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे दिलशाद अहमद। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग रागेश्री। यू आर लिसनिंग टू तार शहनाई रिसाइटल बाय विनायक वोरा। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला by Dilshad Ahmed. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजा राग बिहाग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Rag Bihag.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकॉम्पेनिमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफियुद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वाज अकंपनीड बाय रफियुद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं विभव नागेशकर का तबला वादन. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय विभव नागेशकर. ही प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धातृक धे तक धात

ये था तीन ताल। आप सुन रहे हैं विभव नागेशकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहर संगत कर रहे हैं विनोद पड़गे। विभव नागेशकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल झपताल। दैट वॉज ताल तीन ताल। यू आर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय विभव नागेशकर। ही इज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय विनोद पड़गे। विभव नागेशकर नाउ प्रेजेंट्स ताल झपताल।

ये था ताल झपताल। विभव नागेशकर अपने तबला वादन का समापन ताल धमार से कर रहे हैं। दैट वॉज ताल झपताल। विभव नागेशकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विथ ताल धमार।

ये था ताल धमार। आप सुन रहे थे विभव नागेशकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे विनोद पड़गे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल धमार। यू वर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय विभव नागेशकर। ही वॉज अकम्पनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा by Vinod Padge. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग माल कौंस पर सितार वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं सौविक लाहिड़ी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौंस पर सितार वादन. कलाकार हैं सौविक लाहिड़ी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani instrumental recital followed by Hindustani vocal recital. Listen first to a sitar recital in the rag Mal Kaus. Our artist is Shobhik Lahiri. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar. Listen now to the sitar in the rag Mal Kaus. Our artist Shobhik Lahiri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सबसे पहले प्रस्तुत है मिस्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिस्र पीलू ठुमरी। कलाकार हैं पापिया सेन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है मिस्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिस्र पीलू ठुमरी। कलाकारा हैं पापिया सेन।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Malkons. Our artist was Shobhik Lahiri. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to Mishra Tilak Kamod Thumri followed by Mishra Pilu Thumri. Our artist is Papia Sen. Accompanying her on the tabla is Ashok Roy Chaudhuri and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Mishra Tilak Kamod Thumri followed by Mishra Pilu Thumri. Our artist Papia Sen.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आप सर्वप्रथम मिश्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिश्र पीलू ठुमरी, उसके उपरांत मिश्र पहाड़ी दादर सुन रहे थे। कलाकार थी पापिया सेन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अशोक राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू मिश्र तिलक कामोद ठुमरी फॉलोड बाय मिश्र पीलू ठुमरी एंड मिश्र पहाड़ी दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज पापिया सेन। Accompanying her on the tabla was Ashok Roy Chowdhury, and on the harmonium was Devashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन. वादक कलाकार है मुन्ने खां. सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं जय शंकर.

अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया तबले पर एक ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं जयशंकर।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

ಶರಣ ಕಾಲಿ ರೌ ಕುಂತೀ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गिरिराज. राग है बसंत मुखारी. इसमें आप आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें सुनेंगे तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द कंपनींग आर्टिस्ट इज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम, डीटीएच पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल by पंडित गिरिराज। This is रागम 24/7 DTH anytime Indian music। Continuing the concert, now the artist renders राग रागेश्री।

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द अकंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन. पहले पेश है राग मालकौंस में आलाप. विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. Alap is in Rag Malkons. The Vilambit Gat is set to Ek Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मारू बिहाग, आलाप और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है।
1: You were listening to a Shehnai recital in Raag Malkons by Vikas Babu and Company. Now listen to a Raag Maru Bihag.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू वर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मारू बिहाग। नाउ लिसन टू अ धुन।

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. प्रस्तुत है भक्ति संगीत. कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुरेश वाडकर और सहकारियों के स्वर में इस पारंपरिक रचना से.

सुरेश वाडकर और सहकारियों से ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं उत्तरा केलकर से चंद्रशेखर पांडे की ये भक्ति रचना।

उत्तरा केळकर के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर से ये भक्ति रचना।

लक्ष्मी शंकर के स्वर में संत सूरदास की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं अहमद रफीक के स्वर में संत मीराबाई की ये भक्ति रचना बरसे बदरिया सावन की।

अहमद रफीक के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं विवेक प्रकाश के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

विवेक प्रकाश के स्वर में संत कबीरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं शीला वर्मा से ये भक्ति रचना।

संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, स्वर था शीला वर्मा का। आइए अब सुनते हैं मीनाक्षी मुखर्जी के स्वर में संत सूरदास की ये भक्ति रचना।

मीनाक्षी मुखर्जी के स्वर में संत सूरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं शुभा जोशी के स्वर में संत धर्मदास की ये भक्ति रचना।